असंख मूर्ख अंध घोर संघ जोर राम घोर संघ अमर कर जाए जोर असंख गल बढ़ हत्या कमाए संघ बाबी बाप कर जाए असंघ कूड़े आर कूड़े विराए असंख मलेश मल पख खाए संघ

देहांधा के राज करहिम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र धान्य है के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पीस है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख के सर्वत्र भूख के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मान्या सदैव प्रदान्या के सर्वत्र जापया के सर्वत्र थापया के सर्वत्र पान के सर्वत्र मन के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलिम के परमं फहिम के आकल अलम के साहेब कलम के हुसनल बजू है तमाम रजू है हमेशल सलम सलीखद मुदाम गनीमल शिकस्ते गरीबल बरस्त बिलंद।

जनम जनम पर मत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कहु नानक हर पज मना निरपै पा

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग माला। राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है, आठाओ नंदन प्रथम राग भैरो वै कर ही। पंच रागनी संग उचर ही, प्रथम भैरवी बिलावली। पुनिया की गाव है बंगली, पुन असलेख की पही बारी। भैरव की पंच औनारी, पंच महरख दिसाख सुनाव है। बंगालम माध माध वगाव है, ललत बिलाव लगाव ही। अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गाव है। गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आल अप है। संग रागनी पंच उथप है, गुण करी अरदेव गंधारी। गंधारी सी हुती उचारी तनासरी, ए पांचो गाई। माल राग कौशक संगलाई, मारू मस्तंग मेवारा। प्रबल चंड कौशक उभारा, खौखट पौरानंद गाए। अष्ट माल कौशक संगलाए, पुनु आयो हिंडोल। पंच नार संग अष्ट सोत उठा है, तान कलोल गायन तार मिलावही। ते लंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई। सरस अहीरी लै भर जा, संगलाई पांचो वार जा। सुरमानंद पास करो आए, चंद्र बिंब मंगलन सुहाए। सरस बान ओ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। आसठ पुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी। कशेली पट मंजरी टोडी कही अला, का मोदी औ गुजरी। संग दीपक के था

अष्ट पुत्र श्रीरा के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वह गाव है पांचाओ संग बरंगन लाव है सोठ गोंड मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुनगुनी उच्च सोर सुहाव पुनकीनी मेघ राग से पांचाओ चीनी बहरा तर गज तर केदारा जबली तर नटियाओ जलतारा।

अठारह दस बीस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत हया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावणियाईयावो हरि तेरा मंजनी वसाया है नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारण सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया करसा तो सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटोह जिस दियां इह वडियाईया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित करो अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ पागी हो

संत साजन पए सरसे पूरे गुरते सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भरपू बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे सलोक पवन गुरु पाणी पिता मात।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन संग अलप है अठौ नंदन प्रथम राग, भैरो वै कर ही पंच राग नि संग उचर ही।

आसट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वैगाव है पांचाओ संग बरंगन लाव है सोट गुण मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुनगुनी।